ॐ श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुधियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारे स्थिपुरंतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधस्स गुरुस्त शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु।